0: मी मरियम रिफ्का रशीद रिफ्का गैड दिवे ही एफएम दिवे ही नाइक
1: नोदी है 1 मेगाहर्ट्ज़ दिवे ही एफएम
2: लाए कफ़ा हो लाए

मैं कुछ भी कर लूं, तुम कभी मुझसे मोहब्बत नहीं करना चाहती, और तुम कुछ भी कर लो, मैं कभी तुमसे नफरत नहीं कर सकता।

0: आपको क्या लगा हम भूल गए?
1: हम दोनों हैं अलग अलग, हम दोनों हैं जुदा जुदा, एक दूजे से कभी कभी रहते हैं हम हवा हवा।

আসসালামু আলাইকুম। নদীয়া কে মেগাহার্টস টিভি এফএম গেহুন তেরে নামার আমু ফারওয়াগত কলাকাঙ্গে দে মমে গরি গলগম নে করে গেন্দা লাঞ্চ ব্রেক এ মে দুগে শো একি গ মে বাদল খল দরগুন মিজনা লাঞ্চ ব্রেক এ কম মে দুহে গে শো গে সেহুন তেরে না হামে কমিস কমাকা গুলুং হরি মুহিম মালুমাত কলে ফমি ফোর কো দেনি দেন ইংগুডা নামার নগুন নে গেহুন তেরে না বেস কমে হফতা গে বেস আদিত দুস মে খাস কলানি গানো না গাবাত এহমে কমিস গানো নে নতা গাবাত গ মে কোলে ফা কাং কাং নগুন নে গেহুন তেরে না মে হিসা কো লমুন ননি আদিত দুহে শো গে দত ನಿನ್ ಕುರಿ ಹಫ್ತಾಗಿ ಓಡಿಟ್ ಗಾಣುನ ಗುಳು ಹುರಿ ಮೌಲು ಮಾತಾ ತಿ ಬೇಫು ನಾ ಹಿಸ್ಸಾ ಕುರಂ ಫಶಾಫ ದೇ ನಮಸ್ ತಂಕೊಳ ದಿಗು ಗಾಣುಣೆ ವಿಮ ಎದ್ದು ಹೋಂ ಅಳ್ಗಂಡ ಎ ಹುರಿ ಹಾ ನಂಬರ್ ತೆಕೆ ಎನ್ನುವತ ಮಾದಾ ತೆಕೆ ಕಿಯೇ ನುದೆವುಣ ಎ ವಿಮ ಮಿಯದುಗ ಲಂಚ್ ಬ್ರೇಕ್ ಶೋ ಗಾಣಿ ಕ್ಯಾಸಮ್ ಓಡಿಟ್ ಗಾಣುಣ್ಗೆ ಅಳ್ಗಂಡ ನಿಮ್ಮ ನುದವುಣು ಬೇ ಮಿಯದುಗೆ ಶೋಗ ಕುರಿಯ ಗೆಂದಾಣ ಏಕಂ ಲವೆ ಯಾಕೆ ಕುರಿಯ ದಾಣಿಂಗೆ ತೊ ಹೆಮ ಫುರತ್ ಮಮ್ಮ ಲವೇಕ ಮಿಜ್ಜೆ ಹೇದಾಣ ಲವೇಕ ಫಹು ಮಿಯದುಗೆ ಮೌಲು ಮಾತಕ ಆಕೆಗೆ ಬದ್ದು ಕೊಲ್ಲಾಣ

0: दिव्य ही है कम गेनेस्टनी
1: वायरल वाइफ
2: एकी गोयकु तो मकबूल लिखवा लवतका एकी चार्ट तोगे एमए टॉप लवतका अदे मिनोनस एकी प्लेटफॉर्म तोगे एमए वायरल लवता
1: वायरल वाइफ
3: कोमे हफ्ता आगे वेस आदित्य दोहोगे मेंदुरफाव देज जहायरु रिपीट होम दोहोगे रेगंडु इगार जहायरु आदि अंगार दोहोगे मेंदमु बार जहायरु
0: वायरल वाइफ हमें कनी मोदी है कि मेगाहर्ट्स दिवे ही एफएमओ

0: ए खियाल तका सहुराया केलदेवुनी मा पोडा
1: मिहात
0: मस्ते लाफा सामसलु मस्कोले नगाफा सहुराया को वालेवुनु मिहा तेने एकमकु अशाना बलहट्टा केन हुरी ओळुवालन सहुराया कुरेवेने एवस कमेने वी हुरी हा कमका बुनेमुनु एच्चे पुनेवुनी अशाना बलहट्टा केन हुट्टा
1: दरफुले कोंगेर को आई
2: मम्मा हैप्पी एन्नोंदो
0: अशाना एही जहुरा ए पहनुवी
1: की वे हैप्पी नुआंवे मी मम्मा बेनु बिगोय
0: जहुरा देखि वाहाका अशाना कबूल एन्नुकुरे वो मायकु कुरंगे कंते ओके वाहाका देखकुम के पतलका तेमवेस अशाना देखि एहेम वाहाके
2: मम्मा नुजेने तिहेन उलेका डैडी आलु मेरी कुरम वीनु
0: अशाना मडु मडुम बुनी
1: दरफला डैडी आए को नोले भी गने नो मम्मा डिवोर्स भी ऐ नोनस मिहा हैप्पी को उले उले फा देंगे वह कुट्टा ला कामा को तदरी फुलती आई
0: वारा लोए पाए को जाहुरा बुनी
2: बादी यो बकिया मेरी कुरम वीनुं हैं ऐ मैं मम्मा के क्या तो बुनने बालालम वेके मियाई
1: अब वह कुरम वीनो डैडी की क्या बुने
2: डैडी बुनी डैडी के मसले ने तो मम्मा के मसले ने तिया मम्मा कह रही गाहाल बाला शो ए वाह का दक्का लम डैडी गुलियस मसले नहीं है
3: आदि सिफार नो दी के मैगहर्ट्स दिवे हिफे मटी उनको लेने ती बेहुन तेरी ना उफावेर वाबुत कोल कंगे दे देम में अलगों में मिगेनस तेरी बीमा इब्राहिम वहीद के वाह का इश्क मी गेनेस दिनी मी वाहक के 22 वन बे मी हफ्ता के बात कुड़म का बैवरी वे जहुरा नजरत रशीद नसीफ हुसैन रशीद लैला फातमत वहीदा आदि अशाना के बैकुले दिनी शाइहा अहमद मी हफ्ता के बैल से हों तेरे न कामदी का मोमेद करूँ अन्न हफ्ता के मी वाह कैग मुलेंग आबे कैग के बदलो कोलु म मी गड़िया वाके लाना वस्सलामु अलैकुम
4: ऑडियो वाहका